0: आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, श्रोते हो ताड़ा भी धन्यवाद, जिन्हें भी प्यार ना तुसी सुनते हो बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जी परसों, फिर दियो इजाजत। सत श्री अकाल
1: जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल।

0: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी,
0: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
1: खुदा करे ऐसी मौत जिससे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
0: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
1: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
0: मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई।
1: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं
2: नालायक बदमाश, इज्जत के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान
1: डालो। वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।
2: क्या कहा?

0: बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओ कुतिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान गंगा सिखों का निशान। ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।